गुस्किया गर्दै कता कता विद्यार दिया दे दिया स्किन कलर अकिर्तन ना ये मेरा रो निष्पास ये दिकात और की तक ओके आप इंगुरी में इसकी जतली कता मेरे बाहने